मा घर हो प्रहला घर हो दाल की छोरी मेरे वर्ष महापति मरी गए मेरो विपद के कहूँ चल की मधी विवाह करी दिए बूढ़ा गुरु दीपना मेरे वर्ष

0: 里个那比达嘎扎那比耶都是巴里耶西达耶आगे हो हुना ता पुरबा जाना मा को जो दिनु प्यार छाई छारे यस्तो हारद भो आज मेरो भगवान के न गर्नु गरे
1: माजी का धारा माई बड़ी कन रहे ती माछे गन्दा पनि घुम्दै एक दिन दाई पर सररी से आए पुगे धनी तारी देव मलाई बारी अहिले जान्छु भने थे जसाई।

गोपी नि काली नि काकिना छैन सारी छैन छोरी छैन लानी को शत्रुबाबु नारायण कदम का रुख माथि चढेर

ती सुरई बर सगी मई घर पानी गई सरगे भूपती पानी पर मुसे खरुकी मा सारी कसरी रुजाऊ।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैनेमा थुप्रो साथमा गाडबाट म बदे प्रसाद सागकोट आज विक्रम सम्वत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन् 2026 अक्टोबर 10 तारिक आश्विन 24 गते शनिबार औंसी तिथि आजबाट पितृ विसर्जन अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया साक्षेण कल्पयभरी।

राजा नौश काय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन।

आनंद कंद श्री सच्चिदानंद भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम छित बोलिए श्री आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।